0: एस आधी खुला खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईक सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सैंजा
1: रेडियो आदि खोला 105.4

0: सम्पूर्ण सामग्रीहरू उपलब्ध छ।
1: एन्जल फलफुल तरकारी तथा किराना पसल वालिङ आठ बगालेटोल।
0: प्रोप्राइटर नारायण पङ्गेनी र पेमा डुम्री पङ्गेनी।
1: मोबाइल नम्बर

हजुर, कार्यक्रम को क्रम में राखी को यह छोट अ अंतिम व्यापारिक विश्राम संगे स्वागत कार्यक्रम गांधीसिका भाग में यहाँ आज हम कार्यक्रम गांधीसिका भाग को इस सुंदर व्यवसाय में छौं। आजको व्यवसायमा रहेर श्रीमती खालका नयाँ पुराना लोकगीत भाकाहरूलाई कार्यक्रममा स्थान दिँदै अगाडि बढ़िरहेका छौं। यति बेलाको क्रममा हामी अर्को भाका जोड्छौं। सोही भाकासँगै हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौं। यहाँहरू भने हामीसँगै रहनुहोला।

0: ভিডিও এক্সরে সেবা,
1: সর্বসুলভ ফার্মেসি সেবা,
0: সম্পর্ক স্থান মির্দি ক্লিনিক, ওয়ালিং নগরপালিকা ছ মির্দি, তল্লো চোক পুলকো নজিকই।
1: ফোন নম্বর 63341487, মোবাইল 9896701।
2: চা কস্তো সাস গনাগো তিম্রো তো
3: দাঁত দুখের কস্তো গাঢ় ভাষা আফুলাই তিমি সাস গনাগো ভাঞ্চৌ
2: উপসার গর্নু পর্দেন তো দাঁত দুখে ভরের মাত্রে হুঞ্ছ র
3: রাম্রো র ভরপর্দো ডেন্টাল পায় দেখি উপসার গর্নু জানু পর্লা অব
2: এই হাম্রো ওয়ালিং আট ভিআইপি টোল এনআইএমবি ব্যাংক বাট এই ঘর তলা খুলেকো ছ উপকার ডেন্টাল ক্লিনিক তেহি গয়ের উপসার গরাউ তো তেহা তো দাঁত গিজা তথা মুখ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উপসারহরু গরিন্ছ নি।
4: হাজুর, হামি কাহা নিঃশুল্ক দন্ত পরীক্ষণ তথা এক্সরে, অত্যাধুনিক মেশিন দ্বারা দন্ত পরীক্ষণ, দাঁত কলর কো সিমেন্ট ভর্নে, দাঁত সফা গর্নে, টলকাউনে, দাঁত নভএকো ঠাউমা দাঁত রাখ্নে, দাঁত কো জরিদেখি উপচার আরসিটি গর্নে, ডিজিটাল প্রবিধি দ্বারা এক্সরে আরবিজি গর্নে, বিনা দুখাই দাঁত নিকাল্নে, বুদ্ধি বঙ্গরাকো শল্যক্রিয়া সাথে গিঞ্জা র মুখ সম্বন্ধী সম্পূর্ণ উপচারহরু গরিন্ছ।
2: यहाँ नेपाल मेडिकल काउन्सिल एनएमसी बाट मान्यता प्राप्त अनुभवी दन्त चिकित्सकहरु द्वारा दाँत तथा मुख সম্বন্ধে সম্পূর্ণ রোগ উপচার গরিন্ছ। সম্পর্ক উপকার ডেন্টাল ক্লিনিক, ওয়ালিং আট ভিআইপি টোল, এনআইএমবি ব্যাংক বাট এক ঘর তল, প্রোপ্রাইটর ডাক্তার সুভাষ খান র ডাক্তার সংস্কৃতি প্রধান, মোবাইল 9846648622 র 9824740029।
0: स्कूल तथा अफिस का ड्रेस किनेर बनाउनु पर्ने अनि अन्य कपडा चाहिएको थियो, भागादौड गर्नु पनि समय छैन, सबै सामान एकै ठाउँमा पाउने भए सजिलो हुने।
2: त्यति कुरा मानि यति धेरै तनाव, भर्खरै जानुस् त वालिङ आठ नयाँ बजारको पोसाक बगैँचामा सबै सामान त्यही पाइन्छ।
0: हजुर, सम्पूर्ण विद्यालय र क्याम्पसका ड्रेसहरू, सरकारी कर्मचारीका ड्रेसहरू, संघ संस्था सहकारीका ड्रेसहरू, रेडिमेड बेहुलाका दौरा सुरुवाल, रेडिमेड कोट प्यान्ट, झोला, जुत्ताहरू पाउनुका साथै सम्पूर्ण तयारी तथा काँचो कपडाहरू तथा अर्डर बमोजिमका कपडाहरू तयार गर्नुका साथै सम्पूर्ण सेवाका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्।
2: पोसाक बगैँचा, वालिङ आठ नयाँ बजार, प्रोप्राइटर प्रकाश अर्याल, मोबाइल 9856308029। ए दिदी, पक्नुस्ट भनेको होइन, हतार हतार गर्दैको त हो र।
3: घर बनाए त सकियो, अब डेकोरेसनको लागि फर्निचरका सामानहरू किन्न भनेर बजार जान आँटेकि नि बहिनी।
2: फर्निचरको सामानहरू दिदी, त्यसो हो भने वालिङ एक रामबासमा रहेको सफल फर्निचरमा जानु न, त्यहाँको फर्निचरका सामानले साँच्चै घर सुन्दर बन्नेछ।
3: ए साँच्चै हो र, ल ल त्यसो भए त म त्यही गइहाले।
2: हाम्रा सेवाहरू, फर्निचर तथा फर्निसिङका गुणस्तरीय सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइनुका साथै अर्डर अनुसार घर तथा अफिसियल सामानहरू तयार पारिन्छ। नोट, बैरघारी प्रगति टोल, मुल्का चौतारी तथा नगरपालिका रोडबाट जैसी पदेरा सरेको जानकारी गराउँदछौ। सफल फर्निचर उद्योग भिरकोट छ सुन्दर बजार, वालिङ एक रामबासा, सोरुम भिरकोट एक बैरघारी मेन रोड, वालिङ आठ जैसी पदेरा, मोबाइल 9856309888 र 9856555988।
5: सधैँ सामान्य कपडा लगाएर हिँड्ने मान्छे आज त राम्रो कोट प्यान्ट लगाएर हिँडेका छौ त, यति राम्रो कोट प्यान्ट कहाँ सिलायो तिमीले?
6: दिमाग हुनुपर्छ दिमाग, कपडा जस्तो कुरा सधैँ सिलाइँदैन, परेको बेलामा मात्र सिलाइन्छ, त्यसैले राम्रो कपडा सिलाउने टेलरिङ छनौट गर्नुपर्छ। मेरो छनौट चाहिँ यही वालिङमा रहेको स्टाइल सर्टिङ सुटिङ टेलरिङ हो।
5: हामी कहाँ दौरा सुरुवाल, आधुनिक डिजाइनका कोट प्यान्ट, स्कूल कलेज तथा सम्पूर्ण अफिसियल कपडाहरू दक्ष कारीगरबाट तयार गरिन्छ, साथै इमर्जेन्सी कपडा र रेडीमेड कोट प्यान्ट पनि उपलब्ध छ।
6: प्रोप्राइटर बीपी चोकको रामुदाई, स्टाइल सर्टिङ फिटिङ टेलरिङ सेन्टर, वालिङ आठ मोड, गरिमा ब्याङ्कको ओह्रालोमा,
5: मोबाइल 9815356496।
7: के तपाईलाई गौशाला, गरौँसुर धार्मिक यात्रा गर्न मन लागिरहेको छ तर यातायातको व्यवस्था नहुँदा दर्शन गर्न पाइरहनु भएको छैन भने
2: अब तपाईलाई यात्रा गराउने जिम्मा हाम्रो भयो। अब प्रत्येक दिन बिहान 7 बजे वालिङ पुरानो बस पार्कबाट गौशाला गरौँसुर जाने यातायात सुचारू गरेका छौ। कम्तीमा 6 जनाको समूह भएमा गाडीमा आवत जावत सहित बिहानको खाजाको समेत सुविधा छ। थप जानकारीको लागि श्याम प्रसाद शर्मा, दारी मुन्द्रे, हिमालय हिली भ्यू रिसोर्ट, मोबाइल 9856705756 र 9846705756।
8: यो घरको दैनिक झगडा सुन्न भन्दा त बरु लगे हुन्थ्यो नि रोगैले, औषधि खाएको त हो, निको नभएपछि के गर्ने?
0: किन चिन्ता लिएकी तिमीले? अब